down, be naked. जपजान बिन तम योग नहीं जपजान प्रभु दर्श बिन प्रज्ञान नहीं